0: दसा तुझे पाठा ना शंभर के है मुझे ये दाचे
1: बिल्ली पहले हक आंगे तो बाहर कर सकड़ा चे रगले पैसे सत
0: सत सांग कितले दिस तुम सत्ता तुम सो के आओ तू चला के बोलेता कितले दिस तुम सत्ता तुम सो के आशा तू का ओम बरान संग देता सा माला तू असो नेबोशन करे कल मत का बस भी

0: चे ए हमें समझे एक माका आज से बोशन जाए हंगा सर कहिए ना सगड़न से रीते हाथ माका ये बुर्गे ना का
1: आशा हंगा सर कहीं से ना तू का वो क्या दलता हूँ संते तसा फाला तू असुन अबोशन करे ना तर फाला तक अपोश्चे गति अस्चिना
2: सैतान बैंड वीरा

0: चुका, मुझे लगे भी सारे तरफ का, मुझे लगे भी सारे तरफ
1: हमें सांग का चला गई भी सारे नॉन डैडी हमें विल्ली लगी डॉक्टर लगी वो सब कोई शे भी सारे तो बड़े माकता ने जोर के ले तो दाले इच्छुना का सासुलो

0: अपनी बातें करूं को ये आस्त का ही मुझे ना वरना
1: नो तुझे ना वरना तुझे ना वरना सा
0: तू का देना का तू का देना का मेरा तो ना उठ सकता
1: बिल्ली आता किधर कर चुके ए हमें समझे एक मां का आज से बोशन से हंगा सर कहिए ना सगड़ा से रीते हाथ मां का ये बुर्गे ना का
2: आशा हंगा सर कहीं से ना तू का वो क्या जानता हूँ संते तसा फाला तू असुन अबोशन करे ना तेर फाला तक अपोश्चे गाती अस्चिन
3: केदारा की मेला सैतान बैंड वीरा

0: दादी?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर?
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, इसके कंधे पर रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।

0: नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें।
1: रेडियो 107.8 FM, यंदू मरे।

काले काले भैया फल जल्दी की चढ़ी ना काले काले भैया फल जल्दी की चढ़ी फल जल्दी की चढ़ी।